0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत भजन सुन रहे थे। कलाकार थे नोनी दत्ता। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं सोहिनी राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं सोहिनी राय चौधरी।
1: You were listening to bhajans by our artist Noni Dotto. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the program, we now bring you Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Chowdhury. You are listening to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Chowdhury.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थी सोहिनी राय चौधरी। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अजित गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अजित गोस्वामी।
1: You're listening to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Choudhury. Concluding the program, we now bring you Shyama Sangeet by our artist Ajit Goswami. Listen now to Shyama Sangeet. Our artist is Ajit Goswami.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत श्याम संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अजित गोस्वामी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्याम संगीत। आवर आर्टिस्ट वाज अजित गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन DTH Anytime, Indian music.

Did nothing. Ta dim. Takita. Ta dim. Tim.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग विलासखानी तोड़ी पर ख्याल सुनवाएंगे. कलाकार हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य. आपके साथ तबले पर हैं रूपक मित्रा और हारमोनियम पर हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग विलासखानी तोड़ी पर ख्याल. कलाकार हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani vocal recital followed by Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Bilashkhani Todi. Our artist is Aniruddha Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Rupak Mitra and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to khayal in the rag Bilashkhani Todi, our artist Aniruddha Bhattacharya.

अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत राग विलासखानी तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे अनिरुद्ध भट्टाचार्य, आपके साथ तबले पर थे रूपक मित्रा और हारमोनियम पर थे कमलाक्ष मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपको राग जौनपुरी पर यशराज सुनवाएंगे। कलाकार हैं बुद्ध देव दास, आपके साथ तबले पर हैं आशीष चक्रवर्ती। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर यशराज वादन, कलाकार हैं बुद्ध देवदास।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी पर यसराज सुन रहे थे। कलाकार थे बुद्धदेव दास। आपके साथ तबले पर थे आशीष चक्रवर्ती। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू अ रिसाइटल ऑन द यसराज इन द राग जौनपुरी। आवर आर्टिस्ट वॉज बुद्धदेव दास। Accompanying him on the tabla was Ashish Chakraborty. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है. सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत. इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सितार वादन से. कलाकार है विजय कुमार संत. विजय कुमार संत सितार पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग गौड़ सारंग, आलाप जोड़ और उसके बाद विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में. आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे. सुनते हैं सितार पर राग गौड़ सारंग, कलाकार विजय कुमार संत.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे सितार वादन में राग गौर सारंग, कलाकार थे विजय कुमार संत, आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। आइए इसके बाद हम सुनते हैं विजय कुमार संत की सितार पर बजाई हुई पीलू धुन, तबले पर है विकास पुरंदरे।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे विजय कुमार संत की सितार पर बजाई हुई पीलू धुन। तबले पर थे विकास पुरंदरे। मिश्रवाद्य संगीत का यह कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं सरोद वादन, कलाकार शेखर बोरकर। शेखर बोरकर सरोद पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग भीमपलास। आलाप जोड़ झाला, मध्यलय गत तथा द्रुतलय गत झपताल में। आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे। सुनते हैं शेखर बोरकर का सरोद वादन राग भीमपलास।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे सरोद वादन में राग भीमपलास, कलाकार थे शेखर बोरकर, आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत, हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है कुमुद दीवान का गायन. पहले सुनिए खमाज ठुमरी, बोल हैं अब न बजाओ श्याम बांसुरिया. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय कुमुद दीवान. फर्स्ट लिसन टू अ खमाज ठुमरी रिसाइटल. द वर्ड्स आर अब न बजाओ श्याम बांसुरिया. She is accompanied by Vinod Pathak on the tabla, on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami, and on harmonium by Ashok Kumar.

0: अभी आप सुन रहे थे खमाज ठुमरी और अब सुनिए मिश्र नट ठुमरी। बोल हैं श्याम बिना चैन ना आवे। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, रंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ खमाज ठुमरी रिसाइटल एंड नाउ लिसन टू मिश्र नट ठुमरी। द वर्ड्स आर श्याम बिना चैन ना आवे। शी इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन द तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भरत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमुद दीवान का गाया दादरा, बोल हैं आया कर कह दो सांवरिया से।
1: इन द एंड लिसन टू अ वोकल रेंडिशन इन दादरा बाय कुमुद दीवान। द वर्ड्स आर आया कर कह दो सांवरिया से।

0: अभी आप कुमुद दीवान का गाया दादरा सुन रहे थे। तब पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन दादरा बाय कुमुद दीवान, अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Yeah.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत. इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सुलभा पिशवीकर की गाई हुई मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी से. आपके साथ तबले पर है धनंजय करवंडीकर, हारमोनियम पर है शरद सिधे. सुनते हैं मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी, कलाकार सुलभा पिशवीकर.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी। कलाकार थी सुलभा पिशवीकर। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे शरद सिधिये और तबले पर थे धनंजय खरवंडीकर। श्रोताओं, आइए इसके बाद सुनते हैं दिग्विजय वैद्य की गाई हुई मिश्रा गावती में ख्याली ठुमरी सजना घर मेरे। ताल आधा तीन ताल। आपके साथ तबले पर है रोहन चिंसोरे, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे। सुनते हैं मिश्रा गावती में ख्याली ठुमरी, कलाकार दिग्विजय वैद्य।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मिश्र गावती में ख्याली ठुमरी। कलाकार थे दिग्विजय वैद्य। आइए इसके बाद सुनते हैं दिग्विजय वैद्य का गाया हुआ मिश्र बिलू दादरा। बोल है हटो हटो सैया।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे दिग्विजय वैद्य का गाया हुआ मिश्र पिल्लू दादरा। उपशास्त्रीय गायन के अंत में आइए आप सुनते हैं सुलभा पिशवीकर का गाया हुआ भैरवी दादरा। आपके साथ तबले पर है धनंजय खरमंडीकर और हारमोनियम पर है शरद सिधिये। सुनते हैं भैरवी दादरा, कलाकार सुलभा पिशवीकर।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे भैरवी दादरा, कलाकार थी सुलभा पिशविकर, या आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं संदीप बंद्योपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन. तो आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन, कलाकार संदीप बंद्योपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening, we present Hindustani Tabla Recitals. Listen to a Tabla Recital in Teen Taal. Our artist this evening is Sandeep Banerjee. Accompanying our artist on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a Tabla Recital in Teen Taal by Sandeep Banerjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संदीप बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपक ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं संदीप बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन। तो आइए सुनते हैं रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार संदीप बंदोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज संदीप बनर्जी। Accompanying him on the harmonium was Shomnath Bardhan. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present a tabla recital in Rupak Tal. Our artist is Sandeep Banerjee. Accompanying him on the harmonium is Shomnath Bardhan.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संदीप उपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Rupak Taal. Our artist this evening was Sandeep Banerjee. Accompanying the artist on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर

0: पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्लई। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottiyam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा.

राग है बसंत मुखारी, आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला, तत्पश्चात दो गतें, विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में। संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी. विलंबित गत छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्ण. द विलंबित गत इज सेट टू झप ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला.

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्णा। वी नाउ प्रेजेंट राग श्याम कल्याण। द विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला।

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग श्याम कल्याण बाय पंडित गोपाल कृष्णा। ही इज अकॉम्पनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उत्तरा केळकर के स्वर में संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना।

संत बहिणाबाई की यह भक्ति रचना अभी आपने सुनी उत्तरा केड़कर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं श्रीकांत पारगावकर के स्वर में, जिसके रचयिता हैं बाभ बोरकर।

बाबा बोरकर ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। कार्यक्रम के अगली भक्ति रचना ये सुनते हैं भागवत गौरी के स्वर में। ये रचना है संत एकनाथ महाराज की।

संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति गाना अभी आपने सुनी भागवत गौड़ी के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुमन मते के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना।

संत जनाबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुमन मते के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए अब सुनते हैं गीता दाता के स्वर में कृष्णकांत नांदगांवकर की ये भक्ति रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है विजय पवार ने।

कृष्णकांत नांदगांवकर की भक्ति रचना भी आपने सुनी गीता दाता स्वर में, जिसके संगीतकार थे विजय पवार। कार्यक्रम में आइए अब वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत ये भक्ति रचना सुनते हैं।